0: मरीजों और हर किस्म के जख्म के लिए भी।
1: और बिल्कुल यकीन खा शुरोश खैर जुगरम से अब्दुल्ला बच्चे सुम्र तकड़े देखा।
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: अमन है,
1: प्यार की एक दुनिया लेकर,
2: मोहब्बत समेट कर
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
3: गुलफाम

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।

ना बिल्कुल जनाब दादे पे मटर शिशारे चा सही सलवांदी कवि सिफात कॉस्मेटिक पाकिस्तान ल तरफा वही राशे चिप दरता उजाड़म उख की मितरता पूरी सारी दी मालई द जुन नजर तोर खड़े दे तो आया दावरजी मजेदारी दी स्तड़ स्तड़ मजलू ने दिया उसेम माँ सरद यार गमू ने दिया उसेम या वरमान में पु दुनिया की पूरा निशो तुल निम गड़ी अरमानू ने दिया उसेम अब ब्याह वही का ना सोचो पिकर में गमुनु सर लाड़ सोचो पिकर में गमुनु सर लाड़ सुमरख कुले वह वक्तुनु सर लाड़ जरा में मुगुर तभी बजरा में निश्ता जरा हगा उची यादुनु सर लाड़।

मुकफ्फिल रहने देता हूँ मैं अक्सर दिल के दरवाजा, मुकफ्फिल रहने देता हूँ मैं अक्सर दिल के दरवाजा, कि अब कमरे से तेरी लम्स की खुशबू नहीं आती। हमारी गुफ्तगू महदूद रहती है इशारों तक, हमारी गुफ्तगू महदूद रहती है इशारों तक, मुझे उर्दू नहीं आती, उसे पश्तो नहीं आती। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद हो लरम चिता सुटोल बरो गरमट खुशाला सोकाला खीरा सा अव अखपल दगा जुन्नबा खुंदुना तला सकवाए। प्रोग्राम गेम शो सराज सासु मेजबान ताजुर रहमान सासु पर दराना खिदमत के द अमन रेडियो एफएम 88.4 द प्लेटफार्म ना बिल्कुल जनाब नेक पने गगा हाजिर सासु जमा मल गिरते बिल्कुल तरागा ना मालूम टाइम पूरे दगा गेम शो प्रोग्राम के कम चिता सुता द हर जिमे पौरस द हफ्ते पशपा वाले तरागा ना मालूम टाइम पर उड़ान दिखेगी नुनुन बिल्कुल जिनाब ना टाइम आगा वक्त रागल दे तासुता गेम शो चिदागा प्ले कर रही नवाय करे करा नवदन को सिंगे बिंगे चल दे कोल खे जोन मुखरवान दे जिंदगी मुख तेरीगी ससम मुकड़े दिन मना चरते चरते तलिए चरते चरते चकरे मु लगौली दी कम कम से तले वे रज मुसिंग तेरशवा वक्त साथ ना मुसिंग रवान दी उधर तो वो सासु तरफ तो बारान शिवे दिखे नहीं दी शिवे बारान खो वाजी वा गर्मी चिकमा अलग अलग शुरू शुरू हुआ अगले यूज़ लिबिया माते वाले कड़े रखना।

क्या ससुर मैसेज कहूँ यो जहान मंदन डबल मैसेज ससुर आगल रे बार हाल डी रे सेता मंदन को परेश खुशाला रहता उसे एक अच्छा कर दे भले मैसेज कर दे भाई छी हवल में से जगह लेवाए ची सारा खोरा क्यों तो में से के डेले जाता मदे ना बिल्कुल सब जॉब ची करने हम सही दे दे तो कमाल है मर्डर दस काबिला खालक मौजूद देखे ना मर्डर दे मजा तो कुम्हे दे सवाल अपने से में सवाल हो आओ भी अपने सवाल तरफ तो सही देखे ना रखा बोला था सोलिये रे के मरा मेरे के मरा इसम निकी की खा बिल्कुल यरे गए यरे गए अभी तो जब देते सही जवाब चिकम दे तकरीबन ठोलू मुला रखड़ रे इन बोले चिकम दे ग्रैंड ऑर्डर का और न मड़ गई ना आओ खुद आओ न फ्लास वो गए ना आओ मरीजान बूजी रा बूजी कम ची सीरियस भी ना बूजी रा बूजी के ना आए और न मड़ गए और चिकम दे फायर ब्रिगेड वाले भी के ना अहम मड़ गई ना मड़ा एनीवे जनाब सही जवाब चिकम दे एम्बुलेंस कार दाने थे सही था।

कदा नहीं ने मसला हो के बदल कुमड़ा खैर दस वाले टेंशन आले दवाले नपड़े की मड़ा बाहर सप्ले है बिशूस हाँ हाँ खो खैर दे कल कल दस की इंसान लग डर खता की दगा वाला दगा देगा ना दगा लगी दिली दियो मिनट एंजॉय सही दम जगह ना बात कॉल्स तरफ था मैसेज तरफ था अगेन

Saudara tetap mandana message gaono bente ha saudara mandana din la bubble message kal levaye chi saaj bhai aap kehte hain ki sms aap kehte hain ki sms paon se likhte ho main to paon se nahi likhti hu acha ji das sawai abhi main paon se nahi likhti hu kana sab bata jo ko raman da vich main paon se nahi likhti hu lekin aap unke तो बस मैं क्या करूँ आप इस तरह लिखते हो जिसकी मुझे समझ नहीं आती लिहाजा आप मैसेज दोबारा सही सही भेजा करें ठीक है।

हाँ हाँ जी डेरा मंदिर को सर मैसेज का बोलो नदी ने लवा बल में मैसेज लगा लेवाए छे बिल्कुल आ सुटी को है कैसे हाँ और रोज सा सुटी रहते तमाम ना बल में ऐसे जगह दिवाए छे हाजी वही फातिमा वक्त कम दे हाँ पूरे शेर दे राज कम माफी वाड़ी आई मायरा शिराजी हाजी दस हवाए बल में ऐसे जगह दिवाए छे इमानना फजर थैंक यू इसा सुदा मिनी रखा वो लुटी रहते तमाम ना भाई अंबरी रहमान ठीक है जी तमाम ना कुछ सासू तो ठोलो